0: अरे ओ काशीराम, ओ धौलिया, कहां मर गए सब लोग? आओ आओ शंकर, क्या लाए हो?
1: मालिक, जवार लाया हूं।
0: मालिक के बच्चे, हमारे लिए ये आधी मुट्ठी जवार लाया है और बाकी के अपनी बेटी के बरातियों को खिलाने के लिए रखिए।
1: माई भाव, जितने थे सब लाया हूं।
0: जिस दिन एक गोली उतर गई खोपड़ी में, जितना भेजा है सब बाहर निकल आएगा।
2: राम ज़्यादा।
0: क्या लाए हो धौलिया?
3: क्यों है मालिक?
0: ठीक है, रख दो सब माल वहीं पर।
4: ठहरो।
0: आओ ठाकुर आओ, अभी तक जिंदा हो?
4: हाँ, और जब तक मैं जिंदा हूं, कब्बर से कहना तुम इस गांव से एक दाना भी नहीं ले जा सकते।
0: कौन रोकेगा हमें? तुम?
4: हाँ, मैं और मेरे आदमी।
0: ये आदमी? सुनो, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है।
4: मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है कौलिया, नजर उठाकर देख लो।
5: Well, Gabbar Singh will make his last appearance for today on his tribute. So, Ashok Bhai, you're right. Amjad Khan's father, Jayant, his screen name was. He appeared in several movies in the vintage era of Bollywood. So, Jayant was his father, and of course, the movie, his son became more famous as a villain. And what was Jen's real name? That's something for you to do research on. And we will give Gabbar Singh his last entry for the day. And, well, maybe he'll show up in another tribute coming up after the break as well. So before the break, let me bring out Gabbar Singh and his memory.

0: कितने आदमी थे?
1: सरदार, दो आदमी थे।
0: दो आदमी।
2: सुअर के बच्चों,
0: वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। खाली हाथ क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों, धिक्कार है। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
3: पूरे 50,000।
0: सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
2: और ये तीन हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए।
0: इसकी सजा मिलेगी,
2: बराबर मिलेगी।
0: कितनी गोली है इसके अंदर?
2: कितनी गोली है?
1: 6 सरदार,
0: 6 गोली, 6 गोली है इसके अंदर, 6 गोली और आदमी थी।
2: बहुत बेइंसाफी है ये।
0: अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब इसके तीन खानों में गोली है, तीन खाली। अब हम इसको घुमाए दिए। अब कहां गोली है कहां नहीं हमको नहीं पता,
2: हमको कुछ नहीं पता।
0: इस पिस्तौल में तीन जिंदगी तीन मौत बंद है, देखें किसे क्या मिलता है।
4: We'll be back after the commercial, the introduction of some of the community announcements here on WRSU. Dave Joshi here at your service. Come back.
5: Don't you wish your life came with a warning app?
6: Stop. That dog does not want to be petted.
5: A heads up before something bad happens.
6: You should not send that text.
5: Uh-oh. Life doesn't always give you time to change the outcome, but prediabetes does. With early diagnosis and a few healthy changes, you can reverse prediabetes and prevent or delay type 2 diabetes. To learn your risk, take the one-minute test today at doihaveprediabetes.org. Brought to you by the Ad Council and its prediabetes awareness partners.
7: Tune in to Glorna Heron, the Voice of Ireland program, on Sundays from 5 to 6 p.m. Your hosts, Michael Callahan, Jack McCullough, Tommy Burns, and Joe O'Sullivan, play the best in Irish music and share news from Ireland and the Irish-American community in New Jersey. Broadcasting from the campus of Rutgers University every Sunday at 5 on WRSU 88.7 FM.
8: Hey, it's Jimmy Kimmel. You are listening to WRSU-FM New Brunswick. I am not, because I am in Los Angeles.

हम भी बुरे नहीं होते हैं आपके लिए प्रोग्राम लाते हैं सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी ऑफ सम ऑफ दोस लेजेंड्स दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर सो लेट मी प्ले दिस सॉन्ग एंड दिस वाज अ ट्रिब्यूट टू द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दिस ग्रेट रफी सॉन्ग रिटन बाय अनजान बट हु वाज द म्यूजिक डायरेक्टर फॉर दैट song from a 60s movie movie also had another tribute that we should remember and that's that I don't think we have given him a tribute this year either so let's try to bring the song that was recommended by our friend and loyal listener. He's a Lata classic, so where is my Lata fan, Malti? So give me a name of the tributee for songs like this. And this is an interesting song because it's picturized on once a hero and then became one of the biggest villain of all time.

एक ऐसा संगीतकार जिसने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन अपना बड़ा नाम किया और लोगों ने उनको दिल दिया।

0: फिल्म संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का। जीएस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928 में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थीं। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थीं। इनमें से एक थे जीएस कोहली और दूसरे थे ओपी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएस कोहली और ओपी नैयर का क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया फिल्म आसमान में। नैयर जीएस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जीएस कोहली को अपने साथ लिया। और बस फिल्म आसमान से जीएस कोहली और ओपी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा।
1: कुछ समझ नहीं आ

आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे। लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का।